की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म समृद्ध स्वामी श्री माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व

जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। धर्म सम्राट स्वामी मधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। श्याल

ना लिख दो ना भी मैं रुद्रास, लिख दो मारे रूम मेरा, लिख दो मारे रूम मेरा, गोडो पे कन्हैया लिख ओ पैरों पे बल दे वे, पे कन्हैया लिख दो पैरों पे बल, लिख दो मारे रूम मेरा, लिख दो मारे रूम मेरा। बोलो सतगुरु देव की जय। अच्छा बोलिया बढ़िया। और बोलो तीन तीन। हाँ आना गरुसा।

0: गरुसा मेरे आना आप आना गरुसा मेरी संगतों में आ जाना हरिओम
1: हरिओम।

नमः। श्रीदीप नारायण भगवान की, श्री सुदेव पुरुषा महादेव की, हिमालयन अवतार श्री अलक पुरुषा महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में जिसके निमित्त आयोजन है ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का लाभ लेने आए हैं, घर भी बैठ सकते थे लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें, तो परमात्मा की परम कृपा से यह ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा

वै जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, युग युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप और हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं, ये तो ठीक है। संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं। पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है, तो वो भी बच्चों का पालन करती हैं। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सबका जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए गुरुदेव की कृपा से कि हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। देखो, गुरुदेव

भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। बिना गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक अज्ञानी मनुष्य था, वह न तो महात्मा को मानता था, न भगवान को मानता था, न संत को मानता था, किसी को नहीं मानता था। एक बार संत महाराज उस गांव में पधारे और जा कर के, संत जब आते हैं क्या करते हैं, संत आकर के भगवान से मिलाने का ही कार्य करते हैं। संत हमें परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उस मार्ग को दिखलाते हैं। तो संत जी ने उस अज्ञानी व्यक्ति से जा कर के पूछा कि भैया मैं तुमको कैसा दिखता हूँ। अब उसे न संतों से मतलब था, न किसी से मतलब था। उसने कहा, महाराज आप तो हमारे जो गांव में भूरा पाड़ा है ना, वैसे दिखते हो बिल्कुल। संत ने कहा, अभी इसका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, बिल्कुल मलिन है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा दिखता हूँ ठीक है, लेकिन तुम यह करो, मैं जो तुमको मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ, यह नाम स्मरण करते रहना। फिर संत जी 1 साल बाद आए और पूछा, भाई अब कैसा दिखता हूँ। बोले, महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा, ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी। मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ। महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज ने कहा, अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जा कर के फिर वापस आए। तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरुजी आए और आकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले, प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं, परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही इन्होंने। कहा, जो दो अवतार होते हैं भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं, एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है। तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज, रहते हैं तो, क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ददामि तम, जो अर्जुन है अर्जुन, उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं। तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं, यदा यदा हि धर्म धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं। वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज, जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं। तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था, और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया। तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया और सोचने लगा, थक गया हूँ,
थकने के साथ साथ भूख भी लगी है। यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आकर के रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती। महाराज भोजन कर लिया, अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, हैं मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए। जैसी कल्पना की तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसी कल्पना की सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली, कहा महाराज अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसी कल्पना की महाराज शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनाथ भगवान ने की। तो महाराज परम पिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं वे भी कल्प वृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब, हैं देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है। लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है। एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा और जो जो कल्पनाएं की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, इसलिए हमको समझने की कमी है। ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है। देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं, एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है। करते हैं कि नहीं करते। लेकिन भाई उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है, बताओ, पता है ना। तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था, भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है। बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी, एक ही नाव है। और दूसरी बात, एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला, आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे, प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते तो महाराज कुछ देना ही होता है, आपको कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं। भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है, सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए, अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए।
आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे भगवान देने लगे तब केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

सिया राम। उस केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, क्यों नहीं चाहिए? भाई आपका कार्य क्या है, इस पार से उस पार ले जाना, और ले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपकी पेट पूर्ति होती, परिवार चलता है। कहा प्रभु जो मेरा कार्य है आपका भी वही काम है, आप भी क्या करते हो, इस भवसागर से पार करते हो और मैं भी इस किनारे से उस पार करता हूँ। प्रभु मैंने आपको इस किनारे से उस पार किया है तो आप भी क्या करना, मुझे उस पार कर देना, यही मेरी उत्तर है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, गुरुदेव भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो यही मांगो, ये याद कर लो चौपाई, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब तो अब बस आपका अनुग्रह ही चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ धन संपत्ति दौलत मुझे नहीं चाहिए। आपकी कृपा से पल रहा है, सब काम चल रहा है, बस यही है कि मेरा मन विचलित हो रहा है। इसलिए से मन को शांत कैसे करें, प्रभु आप कृपा करें मेरा मन लग जाए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी इस परम पवित्र सत्संग सभा में आए हैं, और आकर के इस दिव्य सत्संग सभा के जो हीरे मोती है, क्या है, हीरे मोती है, अनमोल रत्न है, ये बार बार मिलने वाले नहीं है। देखो हमेशा नहीं मिलते हैं, बाबू जी की कृपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, और साल में दो तीन अपने ऐसे अवसर आते हैं, और उसमें भी यदि छुट्टी मार दोगे तो महाराज इसका फल मिलने वाला नहीं है। ये परम पवित्र और परम दुर्लभ भी है। तो इस दिव्य सत्संग सभा का आप लाभ लें, आनंद लें, भजनों का आराम तो करना ही है, सोते सोते आधा जीवन बीत गया, आधा और बीत जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए आए हैं तो दिव्य आनंद ले जब तक शरीर साथ दे, एक दिन की बात है, बाकी की हमेशा रात ही रात है, सोना ही सोना है। इसलिए आज दिव्य आनंद ले। दीपनारायण भगवान की। अब थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल दें, बाबू जी की कृपा से थोड़ी भाषा आई, ये भी लोग सज्जन गुरुभक्त बैठे हैं, तो सैल्यूटेशन टू द डिवाइन, ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा। आई वुड लाइक टू बो हिज होलीनेस अवर बिलव्ड गुरुदेव विश्व गुरुजीज होली फिट ऑन द डिवाइन ओकेशन ऑफ महाप्रभु जीज एनिवर्सरी। वी आर हैविंग डिवाइन सत्संग ऑन बिहाफ ऑफ महाप्रभु जीज डिवाइन डे, समाधि डे, एंड वी ऑल आर सो फॉर्चुनेट वन, लकीएस्ट वन, दैट वी आर हैविंग दिस सत्संग इन ओम आश्रम, विच इज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ योगा इन डेली लाइफ। हियर अवर डियर ब्रदर महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, ऑल डियर भक्ताज, ऑल द सन्यासीज ऑफ दिस परंपरा, आई वुड लाइक टू से हरिओम टू एवरी वन एंड वेलकम टू दिस डिवाइन सत्संग। विद द ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी वी आर हैविंग सत्संग एट भक्ति सागर। वी हैव गॉट ऑल्सो ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी टूडे इवनिंग, ही वॉज हियर, ही वॉज ब्लेसिंग अस, वी हैड प्रेयर विद हिम, एंड देन ही सेड ओके यू डू सत्संग, आई एम गोइंग सिटिंग देयर ब्लेसिंग फ्रॉम देयर। सो विश्व गुरु जी इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज गिविंग ब्लेसिंग वेर एवर ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अस, ही इज ऑलवेज थिंकिंग दैट वॉट माई भक्ताज चाइल्ड डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। सो विद हिज ब्लेसिंग वी आर ऑलवेज doing or we are always practicing that we do always good. So the divine satsang we are having here, you know, the great rishis, great saints, they come on this earth not for themselves, but they come for the human being.

हरि ओम। सभी भक्तों ने प्रसाद पाया भाई? सबने प्रसाद पा लिया? हाँ, तो प्रसाद ही बनाने की जो सेवा में लगे हुए हैं अपने गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पृथ्वी सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वे हमेशा जो है भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ तो कम लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो है क्या कहते हैं ना, भोजनामृत का, प्रसादी का लाभ देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी भक्तगण आए हैं आप लोग प्रसाद लेकर के, आज की रात्रि तो कम से कम जब तक शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, सत्संग का श्रवण करिए। हमेशा हमेशा तो मिलने वाला है नहीं, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से जो मिला है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, सत्संग में। सत्संग का तात्पर्य क्या है, सत्संग, सत अर्थात सत्य, जो सत्य है उस सत्य का संग करना, उस सत्य के साथ रहना, उस सत्य के साथ जीना, उस सत्य के साथ चलना, यही क्या कहलाता है, सत्संग। तो सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, आप सत्य मानते हो ना कोई चीज़ को, तो किसे कहते हैं सत्य? सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सत्य। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और वो बात बदल गई कि पहले तो आपने ऐसा कहा था अब ऐसा हुआ नहीं, तो वो सत्य कहलाएगा? नहीं, जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में एक समान कौन रहता है, क्या आप हम जो सब दिख रहा है, झूपा है, ये शरीर है, ये मंदिर है, ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है? देखो आप स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते हैं स्वप्न, तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हाथी घोड़ा आया, बैठ करके गए बढ़िया से, सब देवता सामने आए, और जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न टूट गया, तो फिर क्या कहते हैं, ये तो सत्य नहीं सपना था। उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, सपना है। कौन कह रहे हैं सपना है, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भगवान शिव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं,

जय जय राम। भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। भगवान शिव अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, भगवान का भजन, भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब ये तो जगत क्या है, सपना है। महाराज सपना कैसे हैं, कैसे सपना बताओ, सामने तो दिख रहा। महाराज सपना वो होता है जो हो दिखता पर होता नहीं है, पर यहाँ तो दिख भी रहा, हो भी रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ, सामने हम बोल रहे तो सत्य दिख रहे कि नहीं दिख रहे। लेकिन सपना कैसे हैं कि जैसे ही यह समय बीत जाएगा, कौन सा समय, जो समय चल रहा वर्तमान समय में, तो मैंने कहा तीनों कालों में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल होते हैं, तीन काल की सत्ता होती है। तो क्या यह तीनों कालों में है, क्या 100 वर्ष पहले आश्रम था, 100 वर्ष पहले हम लोग थे क्या यहाँ बताओ, 100 वर्ष पहले थे इस शरीर में, नहीं थे, तो भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, और आगे भी पता नहीं 100 वर्ष बाद रहोगे क्या। जो तीनों कालों में नहीं है वो क्या है, असत्य है, और जो तीनों कालों में भगवान पहले भी था, अभी भी भगवान है और आगे भी रहेगा। कहाँ भगवान, परमात्मा के जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, परमपिता परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। किसमें, संपूर्ण जगत में। एक प्रश्न भी उत्तर भी है, क्या है बोलो, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और उत्तर भी यही है, कण कण में भगवान है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहो, सदैव याद करते रहो, सदैव भजन करते रहो, तो महाराज बेड़ा पार है, नहीं तो इधर से उधर आर पार तो होना ही है। बोले दीपनारायण भगवान की। अब अपनी मधुर वाणी से पप्पू जी गर्ग आपको भजन सुनाएंगे, हमारे गुरु भक्त अशोक जी आप भी इधर आ जाएं, गणपत जी आप भी, और बैठ करके दिव्य प्रकार से भजनों का आनंद हम सबको प्राप्त कराएं।

हरि ओम। माता जी लोग, आप लोग थोड़ा विराम करो, फिर बाद में सुबह फिर गाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी भजन मंडली आई हुई हैं, इनको भी थोड़ा अवसर दे देते। तो अभी अशोक जी चौहान अपने सुमधुर कंठ से बाबजी के भजनों के द्वारा हम सबको आनंद प्राप्त कराएंगे। अशोक जी चौहान, आप हमारे गुरुकुल में संगीत के अध्यापक भी रहे हैं और बाबजी की कृपा से, माँ प्रभु जी की कृपा से आपने स्टेट लेवल तक भी संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को जो है राजस्थान का नाम उजागर किया है, राजस्थान के नाम को जो है वहाँ तक लेके गए हैं। तो सब बाबजी की कृपा है। और यहाँ का इतिहास भी सुनाऊँ मैं आपको, तो यहाँ इस आश्रम में जब से मैं बालपन से अध्ययन कर रहा हूँ तब से अनेकों अध्यापक आए हैं और अनेकों अध्यापकों ने एक दो वर्ष इस आश्रम में निवास किया, रह करके सच्ची श्रद्धा से ईमानदारी से पढ़ाया। और जिन लोगों ने बाबजी पर विश्वास किया, आस्था रखी, ऐसे 50-60 अध्यापक टीचर्स मैं जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लगी, ये सब बाबजी की ही कृपा है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी सुनता है और आपके मनोरथ को पूर्ण करता है। तो उसमें से हमारे आदरणीय गणपत जी, आप भी जो है बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन कराया और अभी वर्तमान में आप जो है सरकारी में जो है अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सुंदर प्रकार से केमिस्ट्री इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो बाबूजी की कृपा बरसती हैं, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा तो क्या करता है, वर्षा करता है। अब आपके पास कितना सामर्थ्य है, लोटा लेके जाओगे तो महाराज लोटा भरोगे, थाली लेके जाओगे थाली, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। तो आइए हम लोग सुनते हैं अशोक जी चौहान को। दीप नारायण भगवान की जय।

अनंत ब्रह्मांड की रचयिता, सृष्टि के पालन करता, घट घट में रहने वाले पर ब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय पूज्यपाद, प्रातस्मरणीय हमारे घनिष्ठ मित्रों में, हमारे घनिष्ठ प्रिय गुरु भाई और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिचंद्र जी महाराज,

0: ये परम कृपा से आज हमारा यहां आना हुआ। पूज्य स्वामी जी की कृपा से हम सभी लोगों को जो विशेष करके भारत से आए हुए हैं, अभाग्यशाली हैं कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय पूज्यपाद का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। आपका बहुत प्रेम है और प्रेम ही सबसे बड़ा है। प्रेम छुपाया न छुपे प्रेम करे प्रकाश, दाबी दुबी रहे नहीं कस्तूरी की बास। तो प्रेम कभी छुपता नहीं। तो उसी प्रेम के साथ में उसी प्रेम वाणी से आज हम कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे योग के बारे में। पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री ने योग की महिमा गागर में सागर भर दिया। योगा कर्म सुकौशलम, योगा अग्नि कर्म दग्धानी। योग के बिना मानव का जीवन सफल नहीं होगा। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, गुड इवनिंग। आई हैव टू स्पीक नाउ लिटिल बिट इन इंग्लिश बिकॉज अवर भक्तास फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम विथ मी एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो वुड लाइक टू हियर व्हाट आई एम telling or talking. You all speak English very good because you live in America. And Swamiji need not to understand because he is in his inner dhyan mein sab kuch mil jata hai. He knows what I am saying, that's enough. Theek hai na?
1: Perfect.
0: और उसमें अगर हम कुछ गलती करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे लिए समथिंग। थैंक यू। योगा, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म के द्वारा हम योग की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराजा भर्तरी अनाउंस्ड एवरीथिंग, देन ही सेड आई वुड लाइक टू पे माय रिस्पेक्ट टू ऑल देवास ऑल गॉडेस, बट देन ही सेड बट ऑल द देवास ऑल द गॉडेस दे आर बाउंडेड बाय कर्मा। ओके, देन आई विल pray to God, Brahma, Vishnu, etc. Then he said, Bhagwan, jinhone avatar liya hai, two kinds of incarnation, nimit and nitya. So why should I not pray to the God? Then he said, no, God is also bounded by karma. Shashi dhal raha, shame tal raha, Lakshman ke pran ja raha, Hanuman kab aoge, na malum mere kis janam ke karam phal raha. Tab Bhagwan Ram bhi ye keh rahe hain, to yes, so the Maharaja Bhartri, he became

0: And moon means emotion. In motion, you are all the times in the motion. Emotion. And emotion means water. So, Chandra jo hai, pani ka pratik hai. Aur wo jal jo hai, pani water, wo water is chanchal moving, there are the waves. So you are in the motion, is the emotion. But what kind of a motion you have, sometime is a hurricane, or a flood. Raja Yogi Agni Jal, jiski ulti, reet. Raja Yogi Agni Jal, jiski ulti reet. Savdhan se Parshuram ji keh rahe hain ki thodi deke preet. Inse aap jyada dosti mat karna. Raja bhi theek hai, kabhi hote hote wo laga deta laat. हाँ वो नेता होता है ना, नेता तो टिकट की समय तो आएंगे, हाँ बाबूजी कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, ऐसे है जीत गया उसके बाद तो हाथ नहीं मिला था क्या, टेलीफोन भी नहीं मिला था, ये बातें होती है. माइंड, नाउ व्हाट इज द माइंड. सो माइंड हमारा जो है, mind is like a camera. It's getting all the information and transferring to the subconscious. And what is the hidden written in the subconscious brings up and gives to the consciousness, intellect, buddhi. And what is a buddhi? Buddhi ka dharma kya hai? बुद्धि का धर्म है उसका जजमेंट देना. सो इंटेलेक्ट गिव्स द जजमेंट एंड माइंड ब्रिंग्स एंड गोज. देयरफॉर माइंड हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज ओनली कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग. दैट इज अ माइंड. इंटेलेक्ट इज गिविंग जजमेंट. But viveka, that is which leads us further. So yoga, asanas, pranayam, chakras, muladhar, swadhisthan, manipur, anahat, visuddhi, agya, bindu, or sahasrar. These are the eight chakras which is very important in our body. So yoga, anant hai. Anant hari katha. साथ में आता है आसन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा. तो आसन कई प्रकार के आसन कहलाते हैं. ये महाराज श्री का जो ये गद्दी बिछी हुई है इसको भी आसन ही कहते हैं. महाराज जी आपके आसन पे बैठिए, वो भी आसन है. आपका आसन कहाँ लगेगा, रात को सहन कहाँ करोगे, वो भी आसन है. और पोस्चर्स जो है वो भी आसन है. आसन की परिभाषा बहुत कुछ है, लेकिन मेडिटेशन करते समय काया स्थैर्यम, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, फिर मेडिटेशन होता है. ये गिलास पड़ी है, गिलास के अंदर पानी है, गिलास स्थिर है, पानी भी स्थिर है. गिलास is motionless, the liquid inside is also motionless. But as soon as I take, glass is moving, liquid is moving. Similarly, if our body is comfortable and motionless, our mind is also steady. Sankalp Biklap ke andar mein dheere dheere dheere dheere dheere dheere aata jata hai, phir meditation ho jata hai. So that's a long way. आसन. अब आपको थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं तो स्वामी जी कहेंगे बाबा जी को माइक दिया और पता नहीं कब तक पकड़े रहेंगे. तो अब बस हो गया पूरा. धीरे से आपको कुछ बताता हूं, सभी बैठे हैं। अरे आए तो खाली बातें करने से कोई भूख थोड़ी मिलती है, मिटती है भूख, मिटती क्या? बातों से भूख नहीं मिटती है, बात करने से पेट नहीं भरता है। टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग, टन्स ऑफ थ्योरी इज नथिंग कंपेयर्ड विद द ग्रेम ऑफ प्रैक्टिस। तो खाली बातें करते जाओ, बातें करते जाओ, पेट नहीं भरेगा। अरे कुछ खाने को तो दो, एक भी चना दे दो तो कम वो पेट में जाएगा, तो कम से कम वो तो थोड़ा काम करेगा ही। भूखे को बताते जाओ कि हाँ श्रीखंड आ रहा है, ओहो हलवा आ रहा है, पूड़ी आ रही है, और क्या आ रहा है, अरे समोसे आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, अरे जलेबी भी बन रही है। वो भूखे के बेचारे के पेट के अंदर में आवाज हो रही है बादल की तरह, लेकिन आया क्या? कुछ नहीं आया। डपोट संघ का नाम सुना आपने? आप लोगों ने डपोट संघ का नाम सुना? महाराज जी आपने सुना?
1: नहीं अभी तक नहीं सुना,
0: सुना दूं? हाँ देखिए ये भी तो बात है, हमारे मारवाड़ में, गुजरात में, हिंदुस्तान में कहते हैं डपोट संघ, कावद है कि नहीं? तो डपोट संघ की बात कर देता हूं, फिर आपको फिर प्रैक्टिकल दे दूंगा, ठीक है? एक आई एम ट्रेलिंग इन हिंदी, ओके, सो दैट आफ्टर यू विल आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, सो टू क्रॉस आई विल मेक समथिंग कॉमेंट्री वेरी क्विकली सो यू विल अंडरस्टैंड। एक गरीब आदमी था, गरीब था, काम तो करता है लेकिन पैसे इतना नहीं मिलता है। तो उसकी पत्नी को उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहां जो कुछ ये पैसे देता हूं काम करना, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरे को बहुत कुछ पैसे दे देंगे। समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का प्रार्थना कर रहा है, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है ना, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है? शिव नाम।

ओह शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए, कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए। प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं, ये शंख इतना चमत्कारिक है। ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीन दयाल, क्या कहना है, आपकी माया, शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये। अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव, मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, तो हमारे सभी के लिए बना बनाया कैटरिंग आ जाए, जैसे आ जाएगा। तो कहा कि हाँ वो आ जाएगा, कि हे प्रभु कृपा कर दी, कपड़े भी मंगा देंगे, सोना दागिना भी मिला, सब जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा बेटा। बस प्रभु यही चाहता था। भगवान शिव अदृश्य हो गए, और क्या हुआ।

कि वह वो शंख लेकर के गांव की तरफ घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते चार पांच दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोचारी। धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोचारी। अरे एक मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है कि हम किसी न किसी संकट में हैं, तो दोस्त के वहां गया तो दोस्त कहा, अरे भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहाँ चले गए थे? कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा, शंकर दादा मरी गया क्या? हाँ मरी गया बापू, तुमने शू गया शंकर दादा ने शू कही है, लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहू। अच्छा, अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे है क्या? अरे शंख दिया है कि बताओ। हे शंख भगवान, हमारे मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के आठ और मैं नौ, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया। अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए। 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आ गए। मित्र कहता कि हाँ भाई, ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही, किसको? मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आ करके वो थका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो असली शंख को तो निकाल दिया और वो जो नकली से लेकर आया उसको उसके झोली में डाल दिया। 10-20 घर का वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के, सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं। अरे शंख भगवान, कराओ ना। क्या कराए? और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका शंख? अरे बेटा, तेरा शंख वो चुरा गया तेरा दोस्त, असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया, तो मैं क्या करूं अब? क्या करे क्या, मैं दूसरा शंख देता हूं। अरे वो क्या करता है शंख? अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा। कि वो क्या है भगवान, कि मांगना 1,000 रुपया तो वो कहे 1,000 से क्या 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है। शंख बोलता है 1,000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, एक ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो। के लाओ देओ कि क्या धक्का दे, धक्का को समझते हो, किसी को धक्का देना ना। अरे तू क्या नहीं दे रहा है कि नहीं, मेरा नाम है डपोल संत। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया। अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी? बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है? अरे मांगे 1 और दे अनेक। किया ऐसे।

कैसे हो सकता कि देखिए, हे शंख भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए तो भगवान शंख देव कहते हैं, अच्छा भक्त, आशीर्वाद है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा, 1 टन सोना ले लेना, ले जाओ, 10 सोना आ जाएगा, कि बस बस बस बस इतना ही चाहता था भगवान, उसको दे दिया। अब वो कहता कि ये शंख बढ़िया है। दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए तो बोला कि अब तो कोई शंख है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला शंख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया और ये नकली शंख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया। दोस्त ने कहा, हे शंख भगवान, मुझे 10 किलो सोना चाहिए। क्या 10 किलो के 1 टन ले रहे भाई? कि हाँ दीजिए। कि क्या धक्का दूं? अरे ये क्या है? कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है डपोल शंख। तो तब से डपोल शंख बना, खाली खुली खुली बातें करता है, वो कुछ नहीं करता है। क्या साहब जी? हाँ, तो डपोल शंख जो था आ गया, चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहियों चारी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना? कराऊंगा जरूर, वो मैं डपोल शंख वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑलराइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ, यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो he went to the beach, was sitting near the ocean, and he was singing Shiva's name, Namo Shivaya, Namo Shivaya. Shiva appeared, said, Bhakta, my devotee, bless you, what do you want? He said, I want money, I want this, I am very poor. So Bhagavan said, okay, I give you these coins. And whenever you want something, tell this coins, make puja, clean, flowers, incense, etc. And then you will prayer and he will give you everything, money, food, cloth, anything. Thank you, Lord. Thank you, thank you. He went. On the way, he had one friend. He stayed overnight there. And what he told the friend, what is this? So in the night, the friend took away the real coins and put it the fake coins. And then the man went next day. After a few days he reached his village and he said, village people, now I have a siddhi, perfections, God gave me everything. Now I invite you all for the lunch, a beautiful buffet. So he said, hey Shankadev, oh Lord, please, provide the best food for all. And there's nothing happened. Because the real coins he took it away. So man was disappointed very much and he went again to the ocean. And then Shiva gave him another one. And that one is that whatever you ask to have, if you ask for $1,000, he said, no, take $5 million. So you don't have to ask always. So he said, okay, give me please. He said, what? I can't give you anything, I'm only speaking. I'm not giving. Only promising, but there is nothing. So that is in Rajasthan, in Hindustani language, is some kind of a joke. So you know why? Because people are sleeping. And then Swamiji gives such a nice chutkala. Wo chutkala kya hai?
वो भोजन के अंदर चटनी चटपटी चटनी किया तो वो जिह्वा के अंदर में फिर स्वाद आ गया. और ऑलराइट नाउ एक्सरसाइजेस. ऑलराइट तो आप सीधा बैठे. वेरी गुड. सिट स्ट्रेट. बहुत अच्छा. वेरी गुड. नाउ स्ट्रेच योर लेग्स. बिल्कुल सावधान. आपको बिल्कुल हल्का एक्सरसाइज बता रहा हूं बट इट इज पावरफुल. ठीक है. सो कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी पे बैठे रहे. घुटने को जोड़ दो. यस. और लेग्स लिटिल स्ट्रेट आउट. पैरों को थोड़ा लंबा कर दो. बहुत अच्छा. इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप एंड इंटरलॉक योर थम्स. स्ट्रेच योर हैंड्स मोर अप. तो ये साइड मसल्स स्ट्रेचिंग. And hands down. Hand down on the thighs. Once more, inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Inhale and look up to the ceiling. Exhale. Now inhale and stretch your hand sideways and above the head. Exhale in the front, hands down. One, inhale. Exhale. Yaad rakhna, bolna mat. श्वास लीजिए एक और दो. दूसरा था एक और दो. अब अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और कहनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए. घुमाए एक श्वास लीजिए ऊपर कंठ और श्वास छोड़िए.

और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच वेरी गुड बस हैंड्स डाउन तो ये दस दस बार करना है दस बार ऐसे और दस बार ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर देखिए श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने थोड़ी को सीना पे लगाइए टच योर

0: and come up. Touch the chin to the chest. And inhale up. Good. 10 times. Swas lena, sir khude ki upar, aur swas chhodte hue, jalandhar bandh. Akashi mudra, aur jalandhar bandh. Bahut acha, bahut hi acha. Ab पैर जो लंबे किए हुए हैं कुर्सी पे बैठे थोड़ा पैर और ऊपर लंबा कर दो और अपने पैरों के अंगूठे और अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रुमाल को. कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली. कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के. किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये सब चला जाएगा, दर्द भग जाएगा कहीं. एक दो वन अंगूठा पकड़ो, अंगुली पकड़ो सब. टू वन टू. अब एक स्ट्रेच योर टोज टूवर्ड्स द फ्लोर इन द फ्रंट ऑफ यू एंड इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल. इसको भी 10 बार. इसके बाद पैर अलग अलग और अंगूठों को पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए. अब इस एक सर्कल बनाइए. वन टू थ्री फोर फाइव. Other direction, one, two, three, four, five. बहुत अच्छा. पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए. एक और धीरे धीरे आगे झुकिए, जितना झुक सके. अंगूठे पकड़िए पैरों के जितना जा सके और इनहेल श्वास लेते वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे. एक श्वास लीजिए, दो श्वास निकालिए, तीन श्वास लीजिए ऊपर, चार श्वास जोड़िए. अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए जैसे नैया को नाव को चलाते हैं ना. एक दो चार स्लोली पांच. अब हथेलियों को ऊपर रखिए, द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज. जो एक मुट्ठी बांधिए, खोलिए, दो यस नाव को चलाते रहिए. क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा। उसका एक उदाहरण बताता हूं। आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है। वाह, अरे महाराज जी इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में। अरे वाह, अब इसको बंद करें या खोले, मुट्ठी को बंद करें या खोले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। भाई देखो, खाने का बढ़िया हो तो मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी। इसलिए मुंह कहता जल्दी पेट में डाल दे तू। तो अब ऐसा देखिए हाथ को, लुपटिया पान सीधा बैठो ही, हाँ नाउ स्लोली क्लोज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, पकड़ दो उसको, होल्ड योर फिस्ट स्ट्रांग एंड विद राइट हैंड होल्ड द रिस्ट, ओके टाइट द रिस्ट, हाथ पकड़ा हुआ है, स्टे लाइक दिस एंड नाउ ओनली ओपन द पाम द लेफ्ट हैंड एंड लुक टू योर पाम एंड टिप ऑफ द फिंगर्स, बट राइट हैंड इज होल्डिंग योर रिस्ट। देखिए आपका हाथ बिल्कुल लुक्स लाइक ए पेल। अब देखिए हाथ को और देखिए, अंगुलियों को देखिए, लुक योर फिंगर्स, लुक योर पाम्स एंड नाउ release your right hand and look to palm, what's happening? फर्क पड़ा? अब इस हाथ को और इस हाथ को देखो कितना फर्क है भाई। अब देखते हैं इसको भी करेंगे तो ये भी तो नाराज हो जाएगा, रात भर कहेगा कि इसी को क्यों आपने। तो इसको भी ऐसा करके मुट्ठी को बांधिए टाइट, और लेफ्ट हैंड से पकड़ देते हैं हमारे ये हाथ, इसको कलाई को पकड़ लीजिए, रिस्ट को पकड़ लीजिए, स्ट्राइट वेरी टाइट एंड ओपन द पाम एंड लुक टू योर हैंड। बहुत अच्छी रेखाएं हैं, भाग्यशाली हो, लंबी उम्र है, पैसे खूब लिखे हुए हैं, लेकिन लेके हुए कहाँ है उसको यहां तो लाओ। हाँ, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाम्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स एंड नाउ व्हेन आई से थ्री वन देन यू विल रिलीज, थ्री टू वन, हाथ को ढीला छोड़ दो, लाल और लाल इसी में है माल। सो देखिए अब आपके हाथ जो हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ठंडी में कार को चलाने से पहले हाथों को ऐसा ऐसा कर दीजिए तो गर्म हो जाएगा। यस, डू इट लाइक दिस, जो ऐसा करोगे तो क्या था आपके हाथों के अंदर में एक चमत्कार बता देता हूँ। चमत्कार बता दे, वहां क्या आएगी तो महाराज नहीं, थोड़ा बहुत चमत्कार करें, ठीक है? चमत्कार को
1: नमस्कार।
0: चलो अब थोड़ा चमत्कार देख लेते हैं।

चाहिए, लक्ष्मी चंचल है। पानी तो चलता भला, बड़ा गंदेला होए तो। अब आपके अंगुलियों के ऑन योर टिप ऑफ द फिंगर्स समथिंग इज टिकलिंग, जस्ट लुक लाइक दैट। नाउ आई वॉन्ट दैट यू हैव 1000 times मोर tickling or like a needles going through your palms, that we should fold your hands. Fold your hands. And now rub the palms

वेरी गुड. अब ऐसे 1 इंच दूर रखो. अब ऐसा करिए, नीडल मूव होगी नहीं कि नहीं, ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है. और ऐसा करिए धीरे धीरे. वो प्रेशर आता ना, मैग्नेट. और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम. देयर इज नो मैग्नेट, वेज गॉन. सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुलियां वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है. कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा. या कहीं दर्द है तो वो हम हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं. तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी, एक्सहेल एंड टेक ऑल द टॉक्सिजन्स एंड द पेन आउट. सेल्फ हीलिंग. तो बस आज तो इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सेशन इज ओवर. इट वॉज 1.5 आवर.

0: विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की जय।

हलक पुरुजी महादेव, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव, दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन धर्म, ओम शांति शांति शांति।

आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव श्री देवापुरीषा महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी।

जय देवाधिदेव श्री देवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सामना श्री परहंस श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। सबक मंडल की जय। Okay, one more. One more.

हिंदू धर्म सम्राट परहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परहंस श्री स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।

0: Mine. Floor is yours.
1: Pante chitiye das. Bolo. So.
2: सबसे प्रथम गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन. दीप नारायण भगवान की जय. सदगुरु देव की जय. आपका और हमारा सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन, यजन, यज्ञ वगैरह करने के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं. आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है. इस जीवन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए, सभी प्रकार के पापों के निवारण के लिए आप और हम सब ने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो मनुष्य अवतार प्राप्त किया है, इस मनुष्य अवतार को धन्य बनाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब आपने मनुष्य योनि प्राप्त करी है, उस योनि का उद्धार के लिए ऐसे गुरु के चरण में आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं, ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं. तो गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन प्रणाम. गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है. आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के चरण में जाते हैं, गुरुदेव की शरण में जाते हैं,
0: नाउ वी डोंट नो एनीथिंग, वी वेर ओनली लिसनिंग टू योर वॉइस. अनुवाद करता हूं. सो द पंडित जी सेठ,
1: पंडित जी आसमंता,
0: फर्स्ट ऑफ द एडोरेशन टू अवर गुरु परंपरा गुरुदेव,
1: गुरु परंपरांक फेस्ट के तिस्तलेतेत,
0: देन सेड वी आर ऑल ब्लेस्ड वन,
1: ते मोंट हॉज मिंद आयडोट्टक वागयुंग,
0: दैट वी आर ऑल हियर टुगेदर,
1: एगयुट लेहेतुंक इट,
0: and that we are here in the shelter of the Gurudev.
1: Hogy Gurudev hajlékában lehetünk.
0: Same time that he mentioned about 8.4 million different kind of lives.
1: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
0: But finally we got a human life.
1: És annak a végén az emberit.
0: Human life should be very pure.
1: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
0: You have to come to the God as pure you were.
1: Tisztán kell jönni Istenhez.
0: So he said we are lucky.
1: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
0: And we are going to have some havan, yagya, puja.
1: Havanát, yagyát, pujat fogunk gyakorolni.
0: And so let's go what he said in short sentences. ठीक है, थोड़ा बोलना ताकि पूरा बताएं.
2: आप और सब, हम सब यज्ञ और हवन पूजन के बारे में जानेंगे. यज्ञ को करने से परमात्मा के बहुत ही नजदीक आप और हम सब पहुंच सकते हैं.
0: While making the yagya,
1: yagyát végzünk,
0: ceremonies, we will have a easy access to God.
1: Ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
2: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सब को दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है. अगर उस पूजन को, उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से, सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती हैं.
0: इन लाइफ many times there's up and down.
1: Életben sokszor fe és lefelé szállunk.
0: There are different circumstances, different kind of situations.
1: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
0: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
1: Yagyák és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
2: ये एक प्रकार का विज्ञान है यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए और साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं
0: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस
1: टू द मैन
0: वैदिक साइंस
1: वैदिक उस टू द मैन
0: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एज I told before, he mentioned.
1: A vastu sastra szerint, ahogy ezt korábban mondtam.
0: Exactly the yagya ceremony must be done in proper measurement.
1: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
0: And in the proper scale. East, west, north, south.
1: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
0: And that fireplace for the Yagya is like the mouth of the god.
1: Yagya tűzhely az olyan mint Isten hegye.
0: And what the mantras is coming like from that supreme.
1: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
0: And how you will think and you will offer your ceremonies there that will become fruitful for you, liberating you.
1: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
2: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं, वो मंत्रों के अधीन हैं. मंत्र जो हैं, वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं. अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है सनातन है और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है
0: द स्क्रिप्चर्स द वेदास उपनिषद एक्सेट्रा देयर मंत्रास which influences the devas.
1: Iratok, a védek, upanishadok, bantrái hatnak a devakra.
0: Invite them.
1: Behívja őket.
0: And these mantras, these ceremonies is perfection by those scholars, so-called the pandit.
1: Mantrák, ceremóniák olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
0: Through their perfection, the devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call to that place

0: Mert de jegye is.
1: Az ő tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a jagja van.
0: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
1: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
0: So this is not only just what we call a mantra chanting, it is the science, it is Sanatan.
1: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, Sanatan.
0: It is eternal.
1: Örök.
0: Unchangeable.
1: Megváltoztathatatlan.
0: It is the truth.
1: Az igazság.
0: Is that scriptures.
1: Ez van az iratokban.
0: That granthas.
1: A grantákban.
2: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है. आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है. ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है. तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें. ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है.
0: सो सच ए अपॉर्चुनिटी, सच ए ओकेशन, सच ए सिचुएशन that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadguru Dev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
1: Az már önmagában
0: it is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
1: Tehát a rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Sadguru Dev jelen van, akkor egy mantra egy ahot kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Sadguru Dev tanulja a mantrádnak.
2: Egy mantra ke madhyam se main apni vaani ko viram dena chahunga.
0: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
1: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.
2: Dhyan.

कृपा। ध्यान करने के योग्य गुरु जी की प्रतिमा है, गुरु जी की मूर्ति है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण हैं, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, और मोक्ष के समान, मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान,

गुरु की जो कृपा है वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। आप सब एक बार बोलिएगा।

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुत।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: ग्लोरी
0: टू डिवाइन मदर
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की यह स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

0: When the clouds dispersed, water covered the thirsty land. This was the first verification of the rain harvesting project. The water flowed straight to the lake. The blood of life has been harvested. This is now a reservoir of life, not only for the ashram, but also for many villages in this thirsty region. Now was the right moment to reforest the hill with soils dug out from the lake. The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's guru, is both the rain cloud and the sun, an eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धोके अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा। लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है। ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है। वो सागर से सहज तार लेते हैं।
0: The following day, there was the festival of the dawn of consciousness, the light of consciousness festival. The day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept the spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यही मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatan Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing has

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की, धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again.